0: किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया।
1: तुझे पता माँ क्या कहती थी? कहती थी बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव खुद आते हैं, जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा।

ब्रह्मा गुरुर विष्णू गुरुर देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः।

0: किस्मत से ज्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं होगा भैया।
1: तुझे पता माँ क्या कहती थी? कहती थी बेटियों की शादी कराने के लिए महादेव खुद आते हैं, जिस राम ने चोंच दिए वही दाना भी देगा।

है। अरे तो लो भैया, हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां,